इतना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया है। सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। सत्संग जी, जपजी साहब दी इतनी महानता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सत्संग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

सत नाम गुरुदास उचारा, ये सूरज प्रकाश दी पंक्तियां। प्रथम प्रवेशियो नदी मझारा, प्रथम पहले आप अगे लगे, आखो सतनाम। जानू लग जल पा सलता को, जानू लग जल पा सलता को, ओ सलता उस गल नू दरी नदी नू क्या के ए जल गोडे गोडे रह गया। संगत सगल देख कर ताको, सतनाम को उचरो आछे, गमन कीन गुरुदास से पाछे, कद लग जल किसके न आयो, कद लग किसे दे कहंदे लक तक भी गल नहीं, जल नहीं आया गोड्या तो ता नहीं जल वधिया, जब जी दी बाणी चल रही। आखो सतनाम, कद लग जल किसके न आयो, ते संगत सकल पार उतर आयो। एक बारी गज के आखो सतनाम, सारी संगत पार हो गई साध संगत जी।

0: रुत आई रुत आई।
1: ओरे रब नाल गल्लां करानियां बहुत फर्क है। तीसरी वडियाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विशेषता आई जड़ी आप जी ने पिछले वीरवार गुरु ने सेवा लई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किधरे भी हों नहीं हों नहीं। नानक सब नानक दवाना

प्रभु की जरा गल सुना दे संसार के विकारां दे बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है कोई ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पा श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने साहबा ने किया जे तू

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इत्थे धन गुरु

जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बह के हुंदी है, शांत मन नाल हुंदी है, तलखी नाल नहीं।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होही। देहोरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले सुनो,

जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हन, पहरावे भी वक्, देश भी वक्, और इन चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपा मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अल्लाह अपेक्ष होई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़ते मुसलमान कुरान पढ़ते मुसलमान अल्लाह नु याद करता है हिंदू राम नु याद करता है ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचिए दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है मकसद दोनों दा

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

रोजे ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा के उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने ये हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे, भाई गुरुदास जी बयान करते हैं।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।